गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसा बंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

लिखा होए ता लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला एती सुरत न पाया, नदियां ते वहां।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, दिस सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी मासूम. आई थिंक कुछ गाने ऐसे होते हैं दे टेक यू down the memory lane and you just feel so nostalgic. This is one such song and I love this movie. I think Shabana Azmi was so good in this song. You know, especially jab wo stairs ke upar jaake roti hai, I think that genuine acting just gives me goosebumps. Main aapse baat kar raha hu aur mere rongte khade ho rahe hain. Aisi bahut sari baatein main aapke sath karta rahunga. I am Veer in for the lovely Deep Raja on Weekend Breakfast on your favorite radio station Laika Gold.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: So whoever finds this letter, my car broke down. There is nothing nearby. And I've already eaten my meal deal sandwich. Please tell my wife that I love her and that she was right. This jacket isn't waterproof. Signed, Daniel S.
3: Oh, actually, scrap that. Green flag's just arrived. Blimey, less than an hour.
4: Local rescue, nationwide. Nothing beats near. Green flag.
5: On average, we get to breakdowns in under an hour based on app and phone call outs combined. See greenflood.uk/data.
6: ये है
7: लाइका गोल्ड
8: ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम
9: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड
9: travelhubworld.com.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
11: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
12: Dil ne ye kaha hai dil se bol chudiya.
11: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: The wait is finally over.
14: Ah, ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
13: Mirzapur is coming to the big screen.
15: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
13: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
16: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
13: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
15: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
11: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
17: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
18: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
19: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
20: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: We're five. Lyca Gold is five. Thank you.

0: Laika, happy birthday to us. Yes, Laika goal turns 5. Thank you so much for all the love that you've given us over the years. A very, very, very happy wala thank you from all of us at Laika Gold. Keep listening because yahan pe bahut sara pyara pyara music hai. Thank you so much again. And it is amazing time for us because Laika Gold has turned 5.
1: Laika Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities.
1: A whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन इस दिसंबर ठंड को बोलो Goodbye.
5: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, toh aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
7: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
10: Big Boss में इस बार मिलेगा प्रदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तथा तूने जान
1: Big Boss Season 20 every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar and for the first time watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
11: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
13: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
14: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
13: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
15: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Laika Radio Greater London.
1: London's biggest classics all day. This is

0: लूटे कोई मन का नगर फ्रॉम द मूवी अभिमान इन द वोकल्स ऑफ मनोरदास एंड लता मंगेशकर. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर, सो स्टे ट्यून्ड.
1: थैंक यू फॉर 5 ग्लोरियस इयर्स. Like a gold.

फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: लंदन आर यू रेडी? राघवेंद्र प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस डिसम्बर. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
4: लाइव म्यूजिक अने गुजराती डायरानी मौज मणवा थई जाओ रेडी. मा कृपा फाउंडेशन यूके प्रेजेंट्स गुजराती डायरो कमलेश घावरी अने जयदीप घावरी साथे संडे 13 सितंबर इवनिंग 5:30 थी लेट नाइट सुधी. वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS. टिकट्स ओनली £10 पर पर्सन, लाइट रिफ्रेशमेंट्स इंक्लूडेड. बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
10: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: डिस्कवर द मैजिक ऑफ स्विट्जरलैंड विद मंत्रा हॉलीडेज सीनिक स्विस टूर फ्रॉम द स्टनिंग स्विस आल्प्स टू इंटरलाकन, लुसर्न, माउंट टिटलिस एंड मोर. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
12: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, लाइका गोल्ड.

0: चल इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड किशोरदा फ्रॉम द मूवी सीता और गीता. वन मोर ट्रैक दिस आवर बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर विद सम अमेजिंग गाने.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: यू नो रफी साहब का अंदाज ही निराला था, क्या ब्यूटिफुली गाया है ये गाना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदूर, रफी साहब यू ग्रेट।
1: ये है लाइका गोल्ड,
2: ये रिश्ता क्या कहलाता है।
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
3: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
4: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
3: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साफो ट्रेवल Auto protected.
7: The wait is finally over.
8: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से।
7: Power, revenge और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
10: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर।
7: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
9: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
11: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
12: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज। द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो, 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर बिग थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk।
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
15: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
16: Up next, Ritu Sharma with the Ritu Sharma Show on Leica Gold.
17: Aap hoga weekend aur bhi suhana. The Ritu Sharma Show mein every weekend 10 a.m. to 1 p.m. on Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands par.

0: वादे निभाएंगे हम। जी हाँ, इस गाने के बाद एक और प्यारा वाला गाना एंड इट्स अ टाइम फॉर मी टू से बाय। वेल, हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। अप नेक्स्ट इज रितु शर्मा, गिव अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, एंजॉय।
1: Reminisce those classics on Like a Gold.

0: लिया। लीजिए, आपके सपनों की रानी के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ऋतु शर्मा जरूर स्टूडियो में आ चुकी हूँ आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। और आप सबको बता दें कि ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स, और जहाँ कहीं भी हमारी आवाज पहुँच रही है सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपको बता दें, आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज हमारा लाइका गोल्ड पूरे 5 साल का हो गया है। अभी छोटा है, नन्ना मुन्ना है, लेकिन आपका बहुत सारा प्यार मिला है और इन 5 सालों में हमने काफ़ी तरक्की की है, बहुत सारा प्यार बटोरा है, बहुत सारे साथियों को जोड़ा है, अपने परिवार को बढ़ाया है, और इसकी हमें बहुत खुशी है। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे आप सब प्यारे प्यारे लिसनर्स को, जो इतने प्यार के साथ लाइका गोल्ड को इतना प्यार देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ क्योंकि आज लाइका गोल्ड 5 साल का हुआ है। तो आज प्रोग्राम में ऐसे ही मस्ती भरे गाने सुनवाती रहूंगी और साथ ही साथ गुड न्यूज़ भी है मेरे पास आपको देने के लिए, और वो ये है कि आज शो में एक नहीं दो दो कंपटीशन है। जी हाँ, दो दो, सही सुना आपने। और वो क्या है और उसमें आपको क्या मिल सकता है, ये जानने के लिए तो आपको मेरा शो कान लगा के सुनना होगा, कहीं कुछ मिस ना कर दे, है ना। तो बस कान लगाकर सुनते रहिए, साथ देते रहिए, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस शो में। गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर याद रखिए आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।

0: नदीम श्रवण के म्यूजिक पर परदेस फिल्म का ये गाना आपने सुना आपके मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क से। और इस गाने को बजाने की वजह आज कुछ खास है। 1999 में आई थी ये फिल्म जिसमें काम किया था शाहरुख खान ने, और शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में लेकर आए थे इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कौन है, सुभाष घई महिमा चौधरी को, जिनका असल नाम ऋतु ही है, इतना प्यारा नाम है। लेकिन सुभाष घई जो है उन्हें तो अपनी हीरोइन का नाम एम से ही चाहिए, बदल दिया नाम और रख दिया महिमा। लेकिन महिमा भी प्यारा नाम है और इस नाम से उन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी। आज महिमा चौधरी की बर्थडे है, जी हाँ आज वो अपनी बर्थडे मना रही हैं। ये उनकी पहली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन आज महिमा चौधरी 52 ईयर्स की हो गई, 53 की हो गई आज, यस 53 ईयर्स की हुई है। 13 सितंबर 1973 बॉर्न है महिमा चौधरी। तो अगर आपकी वो फेवरेट हीरोइन है तो आपकी ओर से मैं कह देती हूँ हैप्पी बर्थडे टू महिमा चौधरी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और महिमा चौधरी तो आज अपनी बर्थडे मना ही रही हैं। इन्होंने 90s के दौर में दो तीन फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर 2000 में इनकी कुछ और फिल्में आई हैं। तो इस तरह से ज़्यादा फिल्में इन्होंने नहीं की हैं, लेकिन जो की हैं वो अच्छी हैं। उनके गाने खूबसूरत हैं और बेस्ट फिल्म तो परदेस थी जिसका गीत मैंने आपको सुनवाया। और आज हमारा लाइका गोल्ड भी 5 ईयर्स का हो गया है।
1: Like a gold is 5.
0: तो आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं बर्थडे विश करने के लिए, तो ठीक है सभी के मैसेजेस प्रोग्राम में जल्दी जल्दी शामिल करती हूँ क्योंकि आज उनकी संख्या कुछ ज़्यादा है। थैंक यू राजेश जी, हैप्पी बर्थडे आपने लिखा है गोल्ड के लिए। थैंक यू संध्या भावसर, थैंक यू अर्जुन जी, सुनीति, दिनेश सौरी जी वॉक पर जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा साथ देंगे, सो थैंक यू, मुझे और क्या चाहिए, बहुत धन्यवाद। उलाश हमारे साथ हैं, मिस शेख ज्योति पटेल, मोनी परदेस का गीत आपको डेडिकेट किया, आपका फेवरेट है, यस मैं आपसे मिली थी, मैं आपका सुंदर चेहरा कैसे भूल सकती हूँ, आप मेरा साथ दे रही हैं, थैंक यू। थैंक यू शेखर आनंद जी, थैंक यू हरीश खत्री जी, तोची जी, दिव्या जी, हमारे विजय गुडूरी जी, आपने लिखा है आज का सुविचार कि अपनी पहचान शब्दों से नहीं कर्मों से बनाओ, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन कर दिखाने वाले बहुत कम। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू प्रज्ञा। सूरज जी साउथ हॉल में ड्राइव कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, नरेंद्र बागिया जी बहुत धन्यवाद। मिसेस पे के चियांग सुन रही हैं, रानी जी इस्लाव में हैं, मालती जी, आंटी जी, दक्षा मिस्त्री, रोजी रजीना एंड ऑफकोर्स हमारे शब्बीर जी जो कि साउथ वेल्स जा रहे हैं, तो आपका सफ़र तो लंबा है, आप तो हमें सुनते ही रहेंगे, सो थैंक यू। एंड महेंद्र पटेल जी, जासू जी, रोशनी हंसा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई एम श्योर आप ये जो अगला गाना है ना ये ज़रूर लाइका गोल्ड को डेडिकेट करना चाहेंगे, हाँ मुझे लग रहा है, ज़रा सुनिए चाहते हैं या नहीं।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जी हाँ बिल्कुल, ये गाना लाइका रेडियो लाइका गोल्ड के लिए परफेक्ट बैठता है और बहुत सारे लोगों का जीवन वाकई में इस रेडियो के कारण खुशियों से भर गया है। जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी, भर गया फूलों से दामन, अब कमी कोई नहीं। और हम चाहेंगे कि ये आपका साथ है हमेशा, यूं ही हमारे साथ बना रहे और हम यूं ही आपको एंटरटेन करते रहे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के प्रोग्राम में एक नहीं दो दो कॉम्पिटिशन्स हैं।
2: This is like a gold.
0: तो आप हमें ध्यान से सुनते रहिए और कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आंटी जी थैंक यू, गीत आपको पसंद आया। फारूक मोहम्मद आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका इस शो में। मृदु जी थैंक यू। विजय गुडूरी जी कहते हैं सॉन्ग बहुत ही अप्रोप्रिएट था, मैंने कहा था ना ये गाना सही बैठता है और ये आप सबकी ओर से ही था, सो थैंक यू। गुरुदेव गांजा आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, सपना स्वीडन में सुन रही हैं। राम राम राजकुमार जी एंड ऑफकोर्स फरजाना हमारे साथ हैं, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और अब आपको बता दें कि अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो क्या करना है आपको।
2: फील गुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप विद Ritu Sharma. This is like a gold. Brought to you by
0: South Hall Travel. तो साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं, दुबई के लिए आपको अच्छी डील्स मिल सकती हैं। 0208-574-8410 उनका नंबर है और साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September।
7: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर ZTV एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: जैसे
1: सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेटको माइक्रो।
3: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एम्बिशियस 11-11 इनिशिएटिव, एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स, फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट? बी पार्ट ऑफ दुबईज ग्रोथ स्टोरी। कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: वॉटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुड, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasa.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: मैं हूँ नीसा नासिर, लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में। मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।

0: Auto Microwave Soup.
1: London, get ready for an unforgettable night.
2: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
1: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
2: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
1: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
2: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
1: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
3: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
4: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner ZTV and exclusive radio partner Leica Radio Network.
5: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
6: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
5: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया.
7: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
8: Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold Greater London. London's biggest classics all day. This is Leica Gold.
9: सुनो कहो कहा
10: सुना
9: कुछ हुआ क्या
10: अभी तो नहीं.

0: लीजिए इस खूबसूरत गाने को हम डेडिकेट करते हैं हमारी मालती जी को और मानसी जी को, जो दोनों ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: London's biggest classics all day. Like a gold.
0: और ये अगला गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार।

0: हमराही मेरे हमराही जो मेरे संग तू तो डर क्या। और ये खूबसूरत सा गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन सभी महिलाओं को जो आज हरतालिका तीज का त्यौहार मना रही हैं। जी हाँ, आज हरतालिका तीज है जो बड़े ही धूमधाम से बिहार और उत्तर प्रदेश और देश के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है। और आज भी महिलाएं इस त्यौहार को यहाँ पर भी मना रही हैं। तो बेसिकली हरतालिका तीज जो होता है वो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन और अखंड सौभाग्य का पवित्र त्यौहार होता है। तो जितनी भी महिलाएं आज हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं उन्हें हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां और माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये जो त्यौहार है मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं या फिर जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा रखा जाता है, ताकि जो सुहागिने हैं उनके पति की लंबी उम्र हो और जो कुंवारी महिलाएं हैं उन्हें मनचाहा पति मिले। बहुत ही कठिन व्रत होता है, मैंने सुना है ये एक निर्जला व्रत होता है जिसमें महिलाएं पूरे दिन और रात बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। इसकी बड़ी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक जंगल में कठोर तपस्या की थी और उनकी सहेलियां उन्हें हरण करके वहां ले आई थी और इसी के चलते इस व्रत का नाम हरतालिका द्वीज पड़ा। सहेलियां मतलब आली और हरण मींस हर लेना, और इसीलिए इसे हर आलिका यानी कि हरतालिका तीज का त्यौहार कहा जाता है। इसमें क्या कुछ होता है आप सब जानते ही होंगे। शिव पार्वती की पूजा होती है और माता पार्वती और शंकर जी के भजन गाए जाते हैं। और ये कठिन व्रत है, पूरे दिन और रात निर्जला रखना। तो भाई जो भी स्त्रियां इस त्यौहार को रख रही हैं हमारी ओर से आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और आप सबको याद दिला दें कि इस वाले आवर में एक कॉम्पिटिशन है और एक प्रोग्राम के लास्ट वाले आवर में, और इस आवर में जो कॉम्पिटिशन है उसके बारे में अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल शुरू करती हूँ आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला और पहले गाने के बाद बताएंगे आपको आज के कॉम्पिटिशन के बारे में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Kyunki saans bhi kabhi.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahut Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
2: क्या खूबसूरत गीत है लता जी और हेमंत कुमार की आवाज़ों में। और हेमंत कुमार ने ही इस फिल्म का म्यूज़िक तैयार किया था। और ये था हमारे आज के जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। और आज जोड़ी नंबर वन है आशा पारिक और विश्वजीत की जोड़ी।
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तो चलिए अब समय आ गया है कि हम बात कर लें आज के इस आवर के कंपटीशन के बारे में। और ये कंपटीशन आपके लिए लेकर आए हैं लाइका रेडियो नेटवर्क विद सनातन इवेंट्स। और हम आपको देने जा रहे हैं एक पेयर ऑफ टिकट्स उस शो के जिसके बारे में बात हो रही है, दिवाली स्टोरी। और ये शो होने जा रहा है एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 27 सितंबर। स्टूडेंट प्री शो होगा 5 बजे से शाम को 5:45 PM तक। और उसके बाद मेन इवेंट होगा फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। और अगर आप इस दिवाली स्टोरी शो के 2 टिकट्स जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको लिख कर भेजना है हमें दिवाली। और दिवाली के साथ साथ लिख कर भेज दीजिए अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, बिल्कुल सही सही। अगर आप विनर बनते हैं तो आपको टिकट्स ईमेल के थ्रू ही भेजे जाएंगे। और ये ईमेल आपको भेजी जाएगी AXS ऐप पर। तो पहले आपको AXXYZ वाला एक्स, AXS, एस फॉर स्नेक शुगर, तो AXS ऐप डाउनलोड करना होगा। और उस ऐप पर आपको ईमेल के साथ टिकट्स भेजे जाएंगे और वहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस भी रजिस्टर्ड कर दीजिए। और अगर आप विनर नहीं बनते हैं तो आप टिकट्स खरीद सकते हैं @diwalistory.com पर जाकर। तो जो मैंने आपसे मांगा है फटाफट कर लिख कर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। क्या, सबसे पहले लिखिए दिवाली और उसके बाद अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। जल्दी से इस वाले आवर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन है जो इस शो को, दिवाली स्टोरी को देखने जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में।
3: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
2: और चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
5: ये है। Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में मेरे सनम फिल्म से था ये गाना और आप सुन रहे थे हमारा आज का जोड़ी नंबर वन। प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और अगर आपने अभी अभी सुनना शुरू किया है तो हम चाहेंगे कि आप भी ज़रूर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए और फटाफट लिखकर भेजिए दिवाली, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी, क्योंकि टिकट्स आपको ईमेल के थ्रू ही मिलेंगे। तो आप हमको हमारा नंबर पता है, फटाफट लिखकर भेजिए। इस वाले आवर के एंड में मैं बताऊंगी कि कौन बनते हैं आज के इस आवर के कंपटीशन के विनर, क्योंकि नेक्स्ट आवर में भी एक कंपटीशन है और उसकी प्राइस भी कमाल की है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
0: तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि बिग बॉस तो चालू हो चुका है और आप बिग बॉस भी देख रहे होंगे, लेकिन अब आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन देख सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो स्टार। 3 दिन का जो इंटरनेशनल्स वन डे इंटरनेशनल्स चल रहे हैं, जो संडे यानी कि आज से शुरू होगा अंटिल थर्सडे 17 सितंबर तक फ्रॉम 2:50 PM। तो डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो स्टार ऐप और जियो स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
2: Leica Extra Podcast Update.
0: तो लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड है जिसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट राइजिंग डेप्थ्स। तो इसको होस्ट किया है खुश ने और इसे आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सुन सकते हैं।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: 0730098823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823।
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
14: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
15: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
14: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
16: Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
18: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel good classics all day. Leica Gold.

0: कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में खुददार फिल्म से था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था अनु मलिक का। और प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ कि कौन बने हैं आज के इस कंपटीशन के विनर।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: तो आज 1 pound आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 103.40 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Yahoo!
2: Yahoo! Chahe koi mujhe jangli kahe.

0: रहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: लीजिए रफी साहब की आवाज में शमी कपूर पर पिक्चराइज ये गाना। जासू जी एंड विजय गुरुजी जी आपके नाम करते हैं। इसके अलावा विनोद जी आप हमारे साथ हैं, थैंक यू। और आपके ढेरो मैसेजेस मिले हैं, बहुत सारे साथियों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और मेरा जीतो जा रहा है कि आप सबको विनर बना दूं, लेकिन विनर एक ही बनेगा इस आवर में और एक बनेगा दूसरे आवर में, और वो दूसरा कंपटीशन होगा, उसकी भी प्राइस बहुत अच्छी है। लेकिन इस आवर के कंपटीशन को जिसने जीता है, जो विनर बने हैं, जो जा रहे हैं दिवाली स्टोरी देखने के लिए, और ये प्रोग्राम होने जा रहा है एट ओवो अरीना फैमिली ऑन संडे 27 सितंबर, और उसके लिए आपको पहले अपने फ़ोन में AXS ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर कीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू आपको टिकट्स मिलेंगे। और जिन्हें टिकट्स मिलने वाले हैं उनका नाम है हरीश खत्री जी, आप बने हैं इस कंपटीशन के विनर और आप किसी एक खास के साथ दिवाली स्टोरी देखने जाने वाले हैं। और जो विनर नहीं बने हैं वो टिकट्स परचेज कर सकते हैं diwalistory.com पर जाकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हरीश खत्री जी आपको, और प्रोग्राम का नेक्स्ट आवर भी सुनते रहिए, एक और कंपटीशन है। और इसलिए आज हम थ्री वर्स गेम नहीं खेलेंगे, आपको कुछ आज जिताएंगे।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: तुम देना साथ मेरा।
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा, एवरी डे एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
7: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
9: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
8: डेजर्ट सफारी,
9: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
8: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
9: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place.
14: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
16: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
17: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज। द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बेक थिएटर हेज में। एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव। 18 सितंबर, बेक थिएटर हेज। टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें श्री रामलीला.theshowmanstudio.co. danupropertiesdanuproperties.co.uk.
18: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
19: Add देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
18: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
12: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
20: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
12: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. London's number one Asian retro music station. Leica Gold is 5.

0: क्या लाइन लिखी है गाने की कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जब से ये गाना बना है तब से इस लाइन को अक्सर ही यूज किया जाता है यूं ही बातों बातों में। और कमाल का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इनफैक्ट शुरू के जो दोनों गाने थे दोनों में म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही था। पहला गीत हमने लता जी की आवाज में आपको सुनवाया एक दूजे के लिए फिल्म से, और दूसरे गाने में भी लता जी थी, फिल्म का नाम मेरा गांव मेरा देश। और लीजिए, दो गीतों के साथ लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए दूसरा घंटा शुरू हो गया। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस आवर में भी एक कॉम्पिटिशन है और इसलिए आज हम अपना 3 वर्ड्स गेम नहीं खेल पाएंगे। हालांकि मेरे 3 वर्ड्स बिल्कुल रेडी हैं लेकिन आज बताने से फायदा नहीं तो आपके कंपटीशन के आंसर्स और ये 3 वर्ड्स गेम के आंसर हो जाएंगे मिक्स और फिर मेरी हो जाएगी हालत ख़राब। तो इसलिए अगले हफ्ते तक के लिए इंतज़ार कीजिए 3 वर्ड्स गेम का। लेकिन फिलहाल कंपटीशन क्या है ये ध्यान से सुनिए। आज का जो कंपटीशन है उसे लाइका रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं हे गॉर्जियस के साथ मिलकर, यानी कि हे गॉर्जियस शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन एक बार फिर से लंदन में आ रही है और ये सब होने जा रहा है सैटरडे 19th एंड संडे 20th सितंबर एट बायरन हॉल हैरो HA35BD। और इनके जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो हैं सारी प्लीटर और एडिशनल की स्पॉन्सर्स हैं बिगिन रीग्रो एंड शाना फूड्स। फ्री एंट्री है इस इवेंट की, आप जा सकते हैं, आप सिंपली विजिट कीजिए heygorgeous.events पर और एंटर कीजिए डिस्काउंट कोड लिखिए लाइका। इसके अलावा बहुत सारे फैंटास्टिक गिव अवेज हमारे यहाँ से दिए जा रहे हैं और अगर आप उन प्राइजेस को जीतना चाहते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजना है वर्ड गॉर्जियस, उसके बाद लिखिए अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, जो भी हमको चाहिए सब कुछ लिखकर भेज दीजिए। और आप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिए। अगर आपका नाम इस वाले आवर के एंड में अनाउंस होता है तो आपको खुद हे गॉर्जियस एग्जीबिशन में जाना होगा अपना प्राइस कलेक्ट करने के लिए। आप दोनों दिन में से किसी भी दिन जा सकते हैं, सैटरडे 19th या फिर संडे 20th को। और अगर आप इन दोनों दिनों में नहीं जा पाए तो आपका जो प्राइस है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने जीता था और हमें प्राइस नहीं मिला, क्योंकि एग्जीबिशन ख़त्म तो प्राइस भी ख़त्म, ठीक है ना। तो ये सब आपको करना है, जल्दी से लिखकर भेज दीजिए जो भी डिटेल्स मैंने आपसे मांगी है। क्या? गॉर्जियस, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस हमें भेजिए फटाफट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23.
0: और हाँ, ये तो बता दूं कि आपको प्राइज में क्या मिलने वाला है। अगर आप इस कंपटीशन के विनर बनते हैं तो आपको मिलेगी एक लग्जरी साड़ी फ्रॉम रामब्रो स्टाइल क्राफ्टेड विथ प्रीमियम सिल्क साड़ी। मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक ब्यूटीफुल लग्जरी साड़ी मिलेगी फ्रॉम रामब्रो स्टाइल क्राफ्टेड विद प्रीमियम गाजी सिल्क। और इसकी फ़ोटो मैं देख पा रही हूँ, आप सोशल मीडिया पर जाकर लाइका गोल्ड की सोशल मीडिया पर जाकर उस वैसी साड़ी को आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये साड़ी है और आपको ये मिल सकती है। और आपको क्या करना है जो मैंने बताया है फटाफट करके भेजिए, हो सकता है ये साड़ी आपको मिल जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Okay, chop onions, add lentils, simmer for 12 hours.
3: 12 hours? Pop to Co-op, get a served Indian main and sides for two. All prepped and ready to cook and just £8 for Co-op members. Co-op, owned by you, right by you.
4: Ends 27th of October. Co-op group membership required. Selected products subject to availability. See co-op.co.uk/serve for details.
1: This is Like a Gold. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
10: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
9: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
10: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
12: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
13: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: Notice the way fans shout at football matches.
15: Oh, wake up!
14: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 a.m. DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: छोटी बहन फिल्म से था ये गाना आशा जी और मन्ना डे की आवाज़ों में। और आप जानते हैं कि मन्ना डे इस बार के हैं हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक और कंपटीशन चल रहा है और विनर का नाम मैं बताऊंगी इस वाले शो के एंड में। लेकिन फिलहाल शुरू करने जा रही हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स का सिलसिला। सुनवाती हूँ आपको पहला गाना।
1: Like a gold is five. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गाना किशोर कुमार की आवाज और इस फिल्म में काम किया था किशोर कुमार ने और उनके साथ थी वैजयंती माला। एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जो 1962 में आई थी और फिल्म में किशोर कुमार हो और कॉमेडी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरे जो कुछ फेवरेट गाने हैं ये गाना उनमें से एक है जिसे आज आपने सुना। और अब सुनवाती हूँ आपको आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कंपटीशन चल रहा है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और हमारे कुछ साथियों ने हमारे इंस्टा पेज पर विजिट करके देख भी लिया है कि वो साड़ी कितनी खूबसूरत है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो आपको ये साड़ी मिल ही जाएगी, और अगर नहीं भी जीतते तो आप ये साड़ी बाय कर सकते हैं। भाई ये साड़ी आपको देने जा रहे हैं, मिलने जा रही है फ्रॉम रामरो स्टाइल, क्राफ्टेड विद प्रीमियम गाजी सिल्क, लग्जूरियस साड़ी। और वहाँ पर आप उनके स्टॉल पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और भी आपको उन पर के बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। तो बिल्कुल ये साड़ी आपको मिलेगी और इस वाले आवर के एंड में ही मिलेगी, पर किसको मिलेगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुनवाती हूँ आपको दूसरा आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गाना, लेकिन उससे पहले
1: This is Ritu Sharma.
0: भाई याद दिला दे कि बिग बॉस शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं कि नहीं। मैं देख रही हूँ, लेकिन मैंने अभी 2-3 एपिसोड ही देखे हैं, अभी बहुत सारा फॉलोअप करना बाकी है, इतना समय नहीं मिल रहा। लेकिन कैसा जाता है बिग बॉस इस बार का वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बिग बॉस कलर्स टीवी पर तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ये जियो स्टार पर भी दिखाया जा रहा है। सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं 9:30 बजे आता है कलर्स टीवी पर, जियो स्टार पर। लेकिन अगर आप इसकी 24/7 फीड देखना चाहते हैं लाइव तो आप जियो स्टार पर देख सकते हैं, हर एपिसोड भी दिखाया जा रहा है वहां पर और पहली बार 24/7 लाइव फीड भी दिखाई जा रही है। लेकिन उसके लिए आपको जियो स्टार लेना पड़ेगा, अवेलेबल है जियो स्टार स्काई टीवी पर इसका ऐप भी अवेलेबल है और इस पर आप अपनी पसंद का बिग बॉस जब मर्जी चाहे देख सकते हैं।
1: Ritu Sharma on Like a Gold.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: यस नाड़ी फिल्म से था ये गाना और ये था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना जिसे आप सभी ने सुना भी और पसंद भी किया। और चलिए अब एक और गाना सुनवाऊंगी और उस गाने के बाद बताऊंगी कौन बने हैं आज के इस वाले कंपटीशन के विनर।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: पर एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि साउथ ऑल ट्रैवल को कॉल कर सकते हैं आप अगर दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका नंबर है 0208-574-8410 और साउथ ऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Okay, chop onions, add lentils, simmer for 12 hours.
3: 12 hours? Pop to Co-op. Get a served Indian main and sides for two. All prepped and ready to cook and just £8 for Co-op members. Co-op. Owned by you, right by you.
4: Ends 27th of October. Co-op group membership required. Selected products subject to availability. See co-op.co.uk/serve for details.
5: ये है Leica Gold.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: Live music અને ગુજરાતી ડાયરાની મોજ માણવા થઈ જાઓ રેડી. માકૃપા ફાઉન્ડેશન UK પ્રેઝન્ટ્સ ગુજરાતી ડાયરો કમલેશ ઘાવરી અને જયદીપ ઘાવરી સાથે સન્ડે 13 સપ્ટેમ્બર ઇવનિંગ 5:30 થી લેટ નાઈટ સુધી. વેન્યુ ફર્સ્ટ ફ્લોર યુનિટ 3 10 સ્ટોન ફિલ્ડ વે સાઉથ રાઇસલીપ HA40JS. ટિકિટ્સ ઓન્લી £10 પર પર્સન, લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડેડ. બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509.

0: क्या काम है।
1: अमिताभ बच्चन की आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया है और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक कमाल का। और आज भी जब केबीसी में अमिताभ बच्चन उस चेयर पर बैठते हैं और कुछ बोलते हैं और पीछे से उनके सुपरहिट गानों की चाहे एक लाइन या म्यूजिक ही चलता है तो ही दर्शक ताली बजाकर झूमने लगते हैं। ऐसा जलवा है आज भी अमिताभ बच्चन का। ये गाना आपने सुना लावारिस फिल्म से लिया था और अब समय आ गया है आपको बताने का कि कंपटीशन के विनर कौन है।
2: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: आज का जो है गॉर्जियस का कंपटीशन है उसे जीता है मोनी सोलंकी। आपने आप बनती हैं हमारे इसके कंपटीशन के विनर और ये कंपटीशन आपके लिए लाइका रेडियो इन है गॉर्जियस लेकर आए हैं। और जो विनर बने हैं उनको बता दूं कि ये जो है गॉर्जियस शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है ये सैटरडे 19th और संडे 20th सितंबर को है एट बायरन हॉल हैरो में HA35BD ये इसका पोस्ट कोड है। और आपको वहाँ पर जाकर अपना प्राइस कलेक्ट करना होगा इन दोनों दिन में से किसी भी दिन। और अगर आप इन दोनों दिन में से किसी भी दिन नहीं जाते हैं तो फिर आपका प्राइस आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखिए 19th और 20th सितंबर को जाना है। और आपको जो साड़ी मिल रही है वो है फ्रॉम रामरो स्टाइल की ओर से। आप उनके स्टॉल पर जाएंगे वहाँ पर आपको साड़ी मिलेगी और ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, क्राफ्टेड विद प्रीमियम सिल्क। और ये साड़ी आपको फिर से बता दूँ रामरो स्टाइल की ओर से मिलने वाली है। लग्जूरियस साड़ी है, लग्जरी साड़ी है और ये है क्राफ्टेड विद प्रीमियम गाजी सिल्क। बहुत सुंदर साड़ी है मोनी, आपको मिल रही है ये साड़ी। और आप जाइए वहाँ पर, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मज़ा आएगा, देख कर आइए। एंड हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स चलते जा रहे हैं तो आप सुनते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन आपका नंबर भी आ सकता है। लेकिन विनर जो हैं उनको मैं बता रही हूँ कि 19 से 20th के बीच में ही जाकर आपको अपना प्राइज लेना है, ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो £1 देगा आज आपको 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So Gold Rate is £103.40 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold
2: is 5.
1: तो लीजिए आज लाइका गोल्ड बिल्कुल 5 ईयर्स का हुआ है और आप सबका बहुत सारा प्यार, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे भी मिली हैं और गोल्ड को आपका ढेर सारा प्यार मिलता है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब आपसे बातें करते करते जाने का समय आ गया है। अगला गीत आपको लेकर चलेगा न्यूज़ तक और न्यूज़ के उस पार अनुराग देंगे आपका साथ गोल्ड पर। आनंदी होंगी आपका साथ देने के लिए, आज नबीला होंगी आपका साथ देने के लिए लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर और जय होंगे लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर। लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी रवि शर्मा जी के शो में ऑन लाइका गोल्ड और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर 10 से 1। तो साथ ज़रूर दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी समय मिले हमें सुनते रहिए। तब तक के लिए, कल तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
4: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.
3: Ye hai
5: Leica Gold.
6: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
0: Dil ne ye kaha hai dil se bol chudiya.
6: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
6: Southall Travel, at all protected.
8: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. Backstage siblings perform live for the very first time in the UK. Join the pioneers of bhajan jamming on Friday the 9th and Saturday the 10th of October at SKLPC Northolt. Ek sham soulful music, devotion aur energy ke naam. Tickets book kijiye on sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
9: नमस्कार. मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place. 11, 11.
14: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
16: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
17: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
18: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
17: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
19: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
20: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
19: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
20: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena, Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Up next, Golden Rock with Unrock on Leica Gold. We're five. Leica Gold is five. Thank you.

0: तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है रफी साहब की आवाज़। फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे। उषा खन्ना जी के करियर का सबसे कमाल का ही म्यूजिक इस फिल्म में, और निदा फजील और इंद्रवीर साहब के लिखे हुए बोल कमाल का ही गीत। आपको जानकर हैरानी होगी, उस दौर में बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया गया था इस गाने को, जो कि इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, इसे सिर्फ रफ़ी साहब ने ही नहीं गाया। इस फिल्म में फीमेल वॉइस में हेमलता जी और मनहर उदास साहब ने भी इसका स्लो वर्जन गाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर रफ़ी साहब के ज़ुबान से गाया गया ये गीत तो इस तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल है। कमाल का ये गाना, हालांकि इस फिल्म के साथ बहुत सारे फेर बदल भी शुरुआत में किए गए। बड़े स्टार कास्ट के चक्कर में इस फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी दिनों तक लटकी रही। आपको बता दें, हालांकि फिल्म के जो निर्माता हैं प्रोड्यूसर मोहन कुमार साहब, इस फिल्म को शुरू करना चाहते थे 1977 में, और फिल्म का टाइटल रखा गया था, जो कि बाद में बदला गया आप तो ऐसे ना थे, लेकिन पहले था आगाज़ और अंजाम। लेकिन धर्मेंद्र साहब इस फिल्म में थे, हेमा जी थी, शशि कपूर साहब थे, जो कि बड़े ही व्यस्त बिजी एक्टर उस दौर में माने जाते थे। डेट्स मिल पाना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए 3 साल तक फिल्म की शूटिंग के लिए इन कलाकारों की डेट्स नहीं मिल पाई, और फिर बाद में तंग आकर प्रोड्यूसर मोहन कुमार साहब ने अपने असिस्टेंट अमरीश तंगल को इस फिल्म की जिम्मेदारी सौंपी, और उस वक्त उभरते कलाकार राज बब्बर साहब, रंजीता कौर और दीपक पराशर को इस फिल्म के लिए शामिल किया गया, साइन किया गया। ये था इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों का, और बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु शर्मा जी का। अगला गीत आपको सुनाते हैं लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीस एंड 9 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This year at Amazon, we're increasing the electric vehicles used for deliveries across Europe to over 10,000. It's a difference you'll notice on your doorstep. Where babies are made a fuss of. Where we deliver footballs for kids' kickabouts. And where they deliver the football straight into next door's garden.
3: Can they have their ball back, please?
2: We're delivering change where it matters. On your doorstep. Based on projected delivery service partner vehicles across the UK and EU by end of 2026.
4: This is Like a Gold. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: Creatives, Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
10: लाइव म्यूजिक अने गुजराती डायरानी मौज मणवा थई जाओ रेडी मां कृपा फाउंडेशन यूके प्रेजेंट्स गुजराती डायरो कमलेश घावरी अने जयदीप घावरी साथे संडे 13 सितंबर इवनिंग 5:30 थी लेट नाइट सुधी वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS टिकट्स ओनली £10 पर पर्सन लाइट रिफ्रेशमेंट्स इंक्लूडेड बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509
11: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 Our line.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100 Atoll Protected.
14: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sona Tours now on 0208-951-0111.
15: Like a Goon. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji, Mukesh sahab ki awaz mein Saraswati Chandra film ka ye khoobsurat sa geet abhi aap sun rahe the. Ye film ek Gujarati sahitya ke jane mane lekhak Govardhan Ram Madhav Ram Tripathi ji ke prasiddh upanyas Saraswati Chandra par aadharit tha. Aur film mein नूतन और मनीष जी ने मुख्य किरदार निभाए थे और कल्याण जी आनंद जी ने क्या कमाल का म्यूजिक दिया था, जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड तक मिला था. चलिए कल का वादा आज निभाते हैं. कल जो गाना नहीं सुना पाए, गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस में से एक जिसको सबसे ज़्यादा सेकेंड हाइएस्ट वोट मिले थे, वो गाना आपके लिए आज.
0: Like a gold is five. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: लता जी की आवाज़ में खानदान फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, ये मुलाकात एक बहाना है। वैसे मुलाकात बहाने से ही होती है, और देखिए अब मेरी आपकी मुलाकात को 3 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन आपके लाइका गोल्ड परिवार को प्यार देने का सिलसिला 5 साल पुराना हो चुका है, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 5 साल आपके साथ, क्योंकि बगैर आप हमारा कोई वजूद नहीं है। तो एक बार बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी को, 5 साल हमें बर्दाश्त करने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लाइका गोल्ड परिवार पूरे कर रहा है अपने 5 बेमिसाल साल।
2: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: रवि साहब और सुषमा श्रेष्ठ जी की आवाज में हम किसी से कम नहीं फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत और अगले गाने के बाद जो कि बड़ा प्यारा सा गीत है 90s का, शाहरुख खान साहब फिल्म में नजर आए थे और बड़े भोले वाले से नजर आए थे, जैसे ही गाना सुनेंगे वैसे ही कनेक्ट करेंगे जो भी 90s में इस फिल्म को देख चुका है। और इसी के साथ आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड हम अगले गाने के बाद बताने वाले हैं, सुनते रहे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.31, अफगान अफगानी 87, बांग्लादेशी टका 166.76, श्रीलंकन रुपीज 444.61 एंड 1 US डॉलर 1.35.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £103.40 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold. You are listening to Golden Rag. अनुराग के साथ।

0: शाहरुख खान और उर्मिला मातोंडकर स्टारर फिल्म चमत्कार, और साथ में इसमें थे नसीर साहब का भी बड़ा ही कमाल का रोल, भूत बने हुए थे इसमें। एनीवेज, आप बताएं हम चुनाव वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड, जिसके लिए जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती, वो है बड़ा ही सिंपल सा वर्ड, पूछो। पूछो, पूछेंगे, पूछा, वो वाला पूछो। बस पूछते पूछते अपने फरमाइश के पिटारे को खोलिए और हम तक पहुंचाइए अपनी पसंद का नगमा।
1: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, Atoll protected.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
2: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सेप्टेम्बर।
3: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
2: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क।
4: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11.
8: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place.
8: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. 11, 11.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
12: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल।
13: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
12: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
14: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
15: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
16: London's biggest classics all day. Leica Gold.

0: आशादाई रफी साहब, पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर साहब की आवाजें शामिल इस खूबसूरत गीत में जमाने को दिखाना है फिल्म। आड़ी बर्मन साहब का संगीत, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे। आप बताएं, हम सुनने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है पूछो, और पूछते पूछते हम तक बहुत सारे खूबसूरत गीत पहुँच चुके हैं। और ये गीत हम तक पहुँचाया था अमित साहब और सोमिला मुंगुर जी ने, और इससे पहले जो हमने आपको राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुनाया पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, इस फिल्म के इस गीत को हम तक पहुँचाया हंसुमती जी, संतोष जी और निर्मला जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, मज़ा आ रहा है पूछ पूछ के गाने हम तक पहुँच रहे हैं। और अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में, गेस कीजिए कौन से फिल्म है और कमाल का ये गीत है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं भारतीय मुद्रा में 128 रुपीस एंड 9 पैसे। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Right here, right now.
3: Football is back on Sky Sports, and you can stream it on Now.
4: It is game on Now.
3: With 1,500 matches this season from the Premier League, WSL, the EFL and the Scottish Premiership.
4: Wow.
3: You can stream in minutes, and with flexible plans, you can have it your way.
4: Now that is world class.
3: Stream Sky Sports on Now today.
2: Right now.
5: 18 plus UK only. Broadband 2.5 megabits per second required. Full terms apply.
6: Ye hai Like a Gold. 10:35 AM.
7: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ravi sahab ki awaaz mein An Evening in Paris film ka khoobsurat sa geet aur ye geet hum tak pahunchaya tha विजय गुदोरे साहब और विनी विनोद जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. एक कॉम्पिटिशन के लिए भी हो जाइए आप लोग तैयार. दिवाली स्टोरी वाला कॉम्पिटिशन आपका कर रहा है इंतजार.
3: Like a gold ace 5. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: मेरा घर मेरे बच्चे मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाजों में ये गीत हम तक पहुंचाया था बाहरों से पूछो। सालिम अख्तर पंकज वर्मा जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही और इंतजार कीजिए कॉम्पिटिशन का थोड़ी देर में आपके साथ।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ
1: लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन। अगर आपको देखना है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान तो जियो स्टार हॉट स्टार का दामन पकड़िए। 3 वनडे इंटरनेशनल जो शुरू हो रहे हैं संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर 2:50 पर यह होगा शुरू। आप डाउनलोड और सब्सक्राइब कर सकते हैं जियो हॉट स्टार ऐप को। जियो हॉट स्टार अवेलेबल है स्काई टीवी एज एन ऐप।
2: On Rock with Golden Rock.

0: रवि साहब की आवाज में आप आए बाहर आई और ये गीत हम तक पहुंचाया है रवि साहब फ्रॉम हैरो से और प्रदीप जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। हो जाइए तैयार कॉम्पिटिशन के लिए अगले 7 सेकंड में।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: तो जनाब लाइका रेडियो नेटवर्क ने हाथ मिला लिए हैं सनातन इवेंट के साथ, जो कि वे दे रहे हैं आपको 2 टिकट्स और ये स्टेज होगा दिवाली स्टोरी का, जहां जो कि ये इवेंट हो रहा है ओवर एरिना में वेम्बली में संडे 27 सितंबर। स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। आपको करना क्या है, सिंपल सा वर्ड हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर दिवाली DIWALI लिखकर भेजना है, लकी पेयर को 2 टिकट्स हम मुहैया कराएंगे। और आपको करना क्या है, इसके अलावा अगर आप नहीं भी जीतते इस कॉम्पिटिशन को तो आप परचेज कर सकते हैं टिकट DiwaliStory.com पर जाकर। विनर्स को टिकट मिलेगा AXS ऐप के द्वारा। इंश्योर करें कि आपका जो ईमेल एड्रेस जो आप हमें भेजेंगे साथ में दिवाली लिखकर, अपना नाम ईमेल एड्रेस, ये एड्रेस AXS ऐप पर भी मेंशन होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, दिवाली लिखिए और हम तक भेजिए, देखते हैं किसे मिलते हैं 2 टिकट्स।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi is 1 pound ke badle Indian currency mein 129.28, Afghani 87, Pakistani rupees 375.42, Bangladeshi taka 166.66, Sri Lankan rupees 444.51 and 1 US dollar 1.35.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold is 5. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £103.40 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Laika Gold.
5: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून, टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
8: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
7: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
8: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place.
12: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
14: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
3: 11.
14: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
15: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
16: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
17: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
18: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज़ में दिल तेरा दीवाना, ये गीत हम तक पहुंचाया है जगदीश जी और उल्लास जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये अगला गीत आ रहा है, फिल्म का नाम मिट्टी और सोना, राजेंद्र सिंह कालरा साहब की फरमाइश के पिटारे से निकलकर। अगला घंटा दिल की बत्ती जलाने के लिए गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शन के साथ हम बताएंगे दिवाली स्टोरी के विनर का भी नाम, बैक टू बैक गानों के बाद।
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे लाइक अ गो।

लता जी और शब्बीर कुमार साहब की आवाजों में वो सात दिन फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। इससे पहले कि हम आपको दिवाली स्टोरी वाले विनर का नाम बताएं, अपनी रीत को फॉलो करते हैं और बताते हैं आपको आज के गोल्डन रा के तीन ऑप्शन। सबसे पहले कायदे प्लस कानून ये है कि उनमें से तीन ऑप्शन जो आपको हम आप गाने के देंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है और उस ऑप्शन को वोट की तरह कास्ट करना है, और जिस गाने वाले ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह भारी मतों से विजयी बनेगा और आज का बनेगा गोल्डन राग। तो ऑप्शन ए है आपके लिए, आज थोड़े से डिफरेंट गाने दिल की सुननी होगी आपको। ऑप्शन ए है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिल्म का नाम है हीर रांझा। ऑप्शन बी है लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, फिल्म का नाम है दो बदन। और ऑप्शन सी है इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म का नाम है आंधी। तीन गाने हमने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिल्म का नाम है ही

0: रांझा, ऑप्शन बी लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, फिल्म का नाम है दो बदन, और ऑप्शन सी है इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म का नाम है आंधी। वोटिंग लाइन हो चुकी है ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: तो भाई लगे हाथ बता देते हैं आपको दिवाली स्टोरी वाले विनर का नाम, जिन्हें दो टिकट्स मिलेंगे और axs.com के जरिए ऐप आप डाउनलोड करें। इन महानुभाव का नाम है राजेंद्र सिंह कालरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हर दिन किसी एक खास का होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, जीतते नहीं, तो आप टिकट हासिल कर सकते हैं। सुनते रहे सुपर संडे वाली महफिल।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 128.9। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना?
7: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
9: द साइकिल ऑफ लव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनास कम्स इन एपिक ट्रू लाइफ एडवेंचर।
10: आई लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग आई न्यू।
9: द स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम दिल्ली हु साइकल्ड 6000 माइल्स फॉर लव। Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
10: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
9: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
11: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
12: Live music અને ગુજરાતી ડાયરાની મોજ માણવા થઈ જાઓ રેડી। માં કૃપા ફાઉન્ડેશન UK પ્રેઝન્ટ્સ ગુજરાતી ડાયરો કમલેશ ઘાવરી અને જયદીપ ઘાવરી સાથે સન્ડે 13 સપ્ટેમ્બર ઇવનિંગ 5:30 થી લેટ નાઇટ સુધી। વેન્યુ ફર્સ્ટ ફ્લોર યુનિટ 3 10 સ્ટોન ફીલ્ડ વે સાઉથ રાઇસલીપ HA40JS। ટિકિટ્સ ઓન્લી £10 પર પર્સન, લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડેડ। બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 07722877509।
13: હેરોલ્ડ New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
15: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मनाडे ललिता जी की आवाज में सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक मनाडे साहब की आवाज में। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस, ध्यान से सुन लीजिए। ऑप्शन ए है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिल्म का नाम है हीर राँझा। ऑप्शन बी है लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, फिल्म का नाम है दो बदन। और ऑप्शन सी है इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म का नाम है आंधी। बड़ा ही खूबसूरत गीत। वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक होस्टेड बाय सलमान खान और ये शो आपको देखने को मिलेगा एवरीडे 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार। जियो स्टार स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
1: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: काकर शर्मिला निके शर्मिला टैगोर जी के साथ बड़ा ही प्यारा गाना फिल्म आया गया है राजा रानी फिल्म का। ये गीत सुन रहे थे किशोर दा लता जी की आवाज में। याद रखें अगले गीत के बाद बंद हो जाएंगी आज के लिए आज की वोटिंग लाइंस। अभी भी है मौका, लगाते रहें चौका।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: आज लगता है फिर से गड़बड़ कर दी है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी गाने जो तीनों ऑप्शंस हमने आपको दिए थे कमाल के हैं तीनों, ये इस बात की तस्दीक खुद आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। बंद हो चुकी है आज के लिए वोटिंग लाइंस, देखते हैं क्या सरप्राइज दिया है आप लोगों ने एक दूसरे को।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.29, अफगानी 87.36, पाकिस्तानी रुपीस 375.22, बांग्लादेशी टका 166.64, श्रीलंकन रुपीस 444.49 एंड 1 US डॉलर
3: 1.35. Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £103.40 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Gold is 5.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लेकिन भाई सुपर संडे वाली महफिल बड़े काम की है। हीर रांझा फिल्म को के इस गाने को मिले हैं वोट। नाम लेते हैं जल्दी से, विजय गोदूरे साहब, मनोहर जी, उल्लास जी, रोजी रजीना, महेंद्र पटेल, सईद इकबाल साहब, नौशीन खान, अमित, फरीदा गुलाम अली जी, राजेंद्र सिंह कालरा साहब, मिसिज सुदेश टेकियर। और एक लिस्ट का नाम और पढ़ रहा हूँ, खुश हो जाइए आप लोग। संतोष जी, नंदा प्रवीण जी, पिंक्स, रानी सोनाहे, मिसिज इकबाल बेगम, जगदीश जी, हंसा बोरा जी, टोची पनेशर, जहीर खान साहब, विजय सिंह, रेखा सुमारिया एंड हना। आपकी भी जो वोट दिए गए ऑप्शन में थे एंट्री हो चुकी है। तो अगला गीत आपके लिए अब होगी आपसे अगले सप्ताह अगले वीकेंड मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हमारे 5 साल आपके साथ जो सुखमय बीता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहें लाइका गोल्ड।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
8: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है।
10: दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
11: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
12: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
11: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Dreaming of paradise?
14: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
13: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
14: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
13: At all protected.
15: London, get ready for an unforgettable night.
13: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
15: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
13: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
15: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
13: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
15: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
16: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
17: व्हाट फूड में डिनर प्लान्स? थोड़ा थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
16: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
17: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
16: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
18: 10 डेज साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवंबर टू मार्च। बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 ऑफ। विजिट sonatours.co.uk और कॉल 0208951011। From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
19: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
20: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत था मेरी महबूबा फ्रॉम द फिल्म परदेस 1997 की फिल्म, और दूसरा गीत था महबूबा वर्ड जिसमें आता है फिल्म चांदनी से, जो कि 1989 की फिल्म थी।

0: आज बहुत ही प्यारी सी एक हीरोइन अपना बर्थडे मना रही हैं। नाम है जिनका महिमा चौधरी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी शानदार एक्टिंग से भी दर्शकों के दिल में एक ख़ास जगह बनाई। महिमा चौधरी का जन्म हुआ था एज रितु चौधरी, दार्जिलिंग में पैदा हुई थी 13th सितंबर 1973 में, एंड शी वन द मिस दार्जिलिंग टाइटल इन लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर शुरू किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिमा चौधरी ने बॉलीवुड में कैसे एंट्री ली, उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे एक एडवर्टीजमेंट ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुँचाया। 90s के दौर में महिमा कई टेलीविजन कमर्शल्स में दिखाई दी, इनमें से एक बहुत पॉपुलर था पेप्सी का कमर्शल, जिसमें वो आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ नजर आई थी, और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस एंड स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म मेकर सुभाष घई का ध्यान अपनी ओर खींचा। सुभाष घई उस समय एक नई एक्ट्रेस की तलाश में थे, उनकी अपकमिंग फिल्म में उसे लॉन्च करने की तैयारी में थे, और उन्होंने महिमा चौधरी को अपनी फिल्म में लिया जिसका नाम था परदेश, जिसका गीत आपने सुना। और लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से रितु चौधरी बन गई महिमा चौधरी, और रितु को ये नाम दिया था सुभाष घई साहब ने ही, तो ये उनका स्क्रीन नेम है। और भी बातें होंगी नेक्स्ट आवर में, कुछ और बातें, और तीनों आवर के पहले गाने जो हैं वो महिमा चौधरी के नाम होंगे, और उन्हें विश करते हुए हैप्पी बर्थडे। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे तो हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए, खुशियाँ मनाते रहे, खुशियाँ बाँटते रहे, खुशियों को बटोरते रहे। चलिए आगे बढ़ते।
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और आइए आपको बता दें कि अगर आप SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पैसे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप सीधा ब्रांच में जा सकते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या SBI योनो मोबाइल ऐप जो है आपने डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर, एंड यो £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू टुडे 128 rupees and 90 paisas।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer,
2: countless personalities,
1: a whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK tour 2026.
1: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Work.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
6: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
7: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।

0: मेरी महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, क्या क्लासिक हिट गाना है। महबूब महबूबा, ये है प्रोग्राम के इस आवर का थीम और मुझे उम्मीद है कि ये सारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं। और ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, नौशाद साहब का संगीत।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: डेफिनेटली टेस्टी सॉन्ग ऑफ द आवर था और मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद भी किया होगा। फिल्म धर्मवीर से चुना हुआ ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, और ये गाने इतने अच्छे लगते हैं। 80s के हों, 70s के, 60s के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, इवन 2000 के गाने भी पसंद हैं, लेकिन ये लाइका गोल्ड है। आप जानते हैं यहाँ पर 2000 के गाने नहीं होते, पर 90s के गाने मुझे बेहद पसंद है, 60s, 70s, 80s सभी। आपको क्या पसंद है ज़्यादा, 50s के गाने या 60s के, 70s के? इस वक्त हम महबूबा पर सभी गीत सुन रहे हैं, महबूब या महबूबा वर्ड है। आपको कोई गाना खास याद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आपको मालूम है किस नंबर पे मुझे आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजना है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने हिमालय की गोद से चुना था और इसमें संगीत था कल्याण जी आनंद जी का. यस, मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत चांद सी महबूबा बहुत पॉपुलर हुआ था. और जब कोई किसी लड़की को बहुत प्यार करता है ना तो ये गीत शायद अब भी गाते होंगे, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा बहुत होता था. क्या आपने भी गाया था अपनी महबूबा के लिए ये गीत, तो ज़रूर बता दीजिएगा.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: और भैया प्रोग्राम का अगला गीत जो आ रहा है कमर्शियल ब्रेक के बाद वो आपको पहुंचा देगा न्यूज तक. न्यूज के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ, मेरा साथ देते रहिएगा.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which? Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
1: Like a gold is 5.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
7: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
6: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
7: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
11: तो माने या ना माने दिलदारा.
12: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
13: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: फिल्म शोले से चुना था मैंने इस गीत को और एक अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में ये गीत शामिल हुआ। आर डी बर्मन साहब की बनाई धुन और उन्हीं के आवाज़ में गाया हुआ ये गीत। उम्मीद करती हूँ आपके मन को भाया होगा। और शोले की बात ही क्या थी, शोले बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिसमें मल्टी स्टार्स थे, संजीव कुमार थे, साथ में अमिताभ बच्चन थे, धर्मेंद्र थे, जया बच्चन थी एंड हेमा मालिनी। सुपर डुपर हिट फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना, उम्मीद करती हूँ आपने जरूर पसंद किया।
1: सरिता सामरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: चलिए एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बता दे। आज आपको एक पाउंड कैन गेट यू 129 रुपीज एंड 30 पैसा इन इंडियन करेंसी। पाकिस्तानी करेंसी 375.38, अफगान अफगानी 87.57 एंड बांग्लादेशी टका 166.47, श्रीलंकन रुपी 444.46 एंड यूएस डॉलर्स 1.35।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LEICA Gold. LEICA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate is what market mein chal raha hai, £103.40 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica. London's biggest classics all day. This is Leica Gold. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
2: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: भक्ति संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर बिग थिएटर हेज. टिकट बुकिंग के लिए विजिट करें shrilamleela.theshowmanstudio.co.uk
4: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
9: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
10: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
9: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
11: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
12: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम कर रही है आपकी की अपनी सरिता सबरवाल। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत चुना था मैंने फ्रॉम द फिल्म दिल क्या करे, जिसमें काजोल भी थी, अजय देवगन थे एंड साथ में थी कौन, महिमा चौधरी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और 1997 की फिल्म परदेश में महिमा ने गंगा का किरदार निभाया था और उनके साथ लीड रोल में थे बॉलीवुड के सुपर हीरो कौन, शाहरुख खान। और एक न्यू कमर एक्ट्रेस शाहरुख खान के साथ जिन्होंने काम किया तो मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट। महिमा ने अपनी पहली फिल्म से ये साबित कर दिया था कि वो एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं, उनकी सिंप्लिसिटी, इनोसेंस एंड शानदार एक्टिंग ने ऑडियंस का दिल जीता था। परदेश एक बड़ी सक्सेस बनी और महिमा को उनकी डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला था। और बस यहीं से शुरू हुआ महिमा चौधरी का असली बॉलीवुड सफ़र। एक लड़की जिसने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर टेलीविजन कमर्शियल्स में दिखाई दी और आखिरकार बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर एक लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई। फिल्म दाग द फायर में भी उनका काम बहुत खूबसूरत था। नेक्स्ट आवर में उस फिल्म का गीत ज़रूर शामिल करूँगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बता दूँ कि दूसरा गीत मैंने चुना दिल तुझे दिया फिल्म से और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। लता जी की आवाज में वादा ना तोड़।
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.

0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते तो काम बहुत आसान है. यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन, और SBI के योनो ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके जरिए घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं. आज आपका 1 British sterling pound कैन गेट यू 128 rupees and 90 paisa. टर्म्स एंड कंडीशंस.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Join us at the Mercedes-Benz Vans Advantage event from the 14th to the 23rd of September. Order your new or approved used Mercedes-Benz van and unlock unmissable event-exclusive offers. And that's on top of existing offers across the range. Your Mercedes-Benz van is waiting for you. Take advantage and drive your business forward. Search Mercedes-Benz Advantage online and book your appointment at your local dealer. Mercedes-Benz Vans. We've got your back. Offers end 23rd of September. Selected models subject to availability at participating dealers. T's and C's apply.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a gold. Ye rishta kya kehlata hai. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 hour line.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 0208-574-8410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
5: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
5: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
5: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
5: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
6: Live music ane Gujarati Dairani Moj Manva. Thai jao ready. Makrupa Foundation UK presents Gujarati Dairo. Kamlesh Ghavari ane Jaideep Ghavari sathe. Sunday 13 September evening 5:30 thi late night sudhi. Venue: First floor unit 3, 10 Stonefield Way, South Ryslip, HA40JS. Tickets only £10 per person. Light refreshments included. Booking mate call karo Rashmi Shah 0772-287-509.
7: Maharaja Tours के साथ इस November explore कीजिए Singapore, Malaysia और Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok के floating markets और beautiful temples, फिर Pattaya और Coral Island का मज़ा. Fantastical Far East from सिर्फ £2,799 per person, flights, 4-star hotels, Indian khana और amazing excursions, सब included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
8: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
9: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
10: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी।
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
0: जी सरकार।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Like a gold is five.
2: चलिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर लें। संजय कपूर एंड आफ्ताब शिवदेसानी आ रहे हैं, जेर एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद संजय कपूर, आफ्ताब शिवदेसानी, सिंगर्स अमन त्रिखा एंड मयूरी पटालिया। 27 सितंबर को लेस्टर में होंगे, डी मॉन्ट फोर्ट हॉल में, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइका रेडियो।
3: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold.
4: Bhi aaja ke aa gayi

0: द टाइटल ट्रैक ऑफ कस्मे वादे और दो और बड़े प्यारे से गीत आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा।
1: लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर Your travel mantra.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
2: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
1: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
2: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
3: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
2: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
4: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रदान और एक्स्ट्रा जीवन दान.
5: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
6: The wait is finally over.
7: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
6: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
9: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
6: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
8: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
10: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
12: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
13: Sarita Sabawal. Feel good classics all day. This is Leica Gold.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने आपने। ये प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर है। पहला गीत मैंने चुना था महिमा चौधरी की ही फिल्म से, फिल्म का नाम था दाग द फायर, 1999 की फिल्म थी एंड बहुत प्यारा काम किया था इस फिल्म में भी महिमा चौधरी ने। आज अपना बर्थडे मना रही है, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक लड़की जिसने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर टेलीविजन कमर्शियल्स में दिखाई दी और आखिरकार बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर एक लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने दिल क्या करे, धड़कन, कुरुक्षेत्र, लज्जा, बागवान जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कई मुश्किल दौर भी आए हैं, फिर भी उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया और अपने करियर में आगे बढ़ती रही। महिमा चौधरी की कहानी मुझे ये सिखाती है कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी और कहीं से भी आ सकती हैं। जी हाँ, मुझे ही नहीं आपको भी सिखाती है, सबको ये सिखाती है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से भी आ सकती हैं। एक ऐड से शुरुआत की और पहचान हुई और सुभाष घई तक पहुंचाया। सुभाष घई की फिल्म परदेश ने उन्हें बॉलीवुड के पर्दे पर पहुँचा दिया और इस तरह रितु चौधरी बनी महिमा चौधरी। कभी कभी ज़िंदगी का एक छोटा सा मौका आपकी पूरी कहानी बदल देता है। तो ये गीत था फ्रॉम द फिल्म दाग द फायर, इसमें चंद्रचूर सिंह थे हीरो और संजय दत्त का भी बहुत अच्छा काम था। और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म दर्द 1981 की फिल्म थी। इसमें किसने काम किया था, राजेश खन्ना एंड हेमा मालिनी थे, पूनम ढिल्लन भी थी इस फिल्म का हिस्सा। अमरीश संगर ने इसे डायरेक्ट किया था और खयाम साहब का संगीत प्यार का दर्द है। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी ये गाना और उम्मीद करती हूँ आपने भी ज़रूर पसंद किया।
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
2: Like a Gold.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बहुत आसान है। You can exchange the money in branch, online और SBI Yono mobile app download किया हुआ है, तो उसके जरिए घर बैठे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Terms and conditions apply. आज आपको 1 British sterling pound can get you up to 128 rupees and 90 paisa. Terms and conditions.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Join us at the Mercedes-Benz Vans Advantage event from the 14th to the 23rd of September. Order your new or approved used

0: Mercedes-Benz van and unlock unmissable event-exclusive offers. And that's on top of existing offers across the range. Your Mercedes-Benz van is waiting for you. Take advantage and drive your business forward. Search Mercedes-Benz Advantage online and book your appointment at your local dealer. Mercedes-Benz vans. We've got your back. Offers end 23rd of September. Selected models subject to availability at participating dealers. T's and C's apply.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali story, the journey of Ram and Sita.
3: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, Zee TV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: नमस्कार. मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટસીઇંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
7: भक्ति, संस्कृति और रामायण की अमर कहानी अब देखिए लाइव ऑन स्टेज. द शोमैन स्टूडियो प्रेजेंट्स श्री राम लीला, अ ग्रैंड डिवाइन कल्चरल शो, 18 सितंबर को बिग थिएटर हेज में. एक ही दिन में दो ग्रैंड शोज, दोपहर बाद 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. प्रभु श्री राम की लीला, हनुमान जी की भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिव्य अनुभव. 18 सितंबर बिग थिएटर हेज. टिकट्स बुकिंग के लिए विजिट करें shriramleela.theshowmanstudio.co.uk.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
11: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
12: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट मन्ना डे जी। मन्ना डे जी का ही गाया हुआ ये गाना बहुत खूबसूरत है और उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर पसंद किया। फिल्म का नाम था अनुभव, जो 1971 में आई थी। एंड बहुत मीठा सा गीत है, मीनिंगफुल गाना है, ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर पसंद आया होगा।
1: Like a gold is five. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बम्बई का बाबू एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए हुआ ये गीत जादू जादू कर जाता है। आज हमने महिमा चौधरी का बर्थडे मनाया। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे एज वेल तो हमारी तरफ से बर्थडे की शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए, खुशियाँ मनाते रहें, खुशियों को बाँटते रहें एंड खुशियाँ बटोरते रहें। आज लारा अपना बर्थडे मना रही है, आर्यन अपना बर्थडे मना रहे हैं, दोनों को बहुत बहुत बधाई। मेरे वो साथी जो पूरे 3 घंटे तक मेरे साथ जुड़े रहे और मेरा साथ देते रहे, उन सबका मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी तरह से आप लाइका गोल्ड सुनते रहे हैं, लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। लेस्टर में बैठे हैं, बर्मिंगम में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठे हैं, मिडलैंड्स में कहीं भी हैं, लंदन के किसी भी इलाके में बैठे हैं, उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा। आपका साथ बहुत मायने रखता है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है ये जानकर कि कौन से कान कहाँ बैठे प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं। अपना साथ इसी तरह से हमारे साथ बनाए रहें, अपना प्यार इसी तरह से हम तक पहुँचाते रहें। ये बता दूँ मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह जो विंटेज गोल्ड प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश करते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे, एंड देन उसके बाद आप हमारी ओवरनाइट सर्विस में बैक टू बैक म्यूज़िक सुन पाते हैं। फिर मंडे सिलसिला शुरू हो जाएगा, काजल आएंगे इन द मॉर्निंग, काजल के बाद फिर रवि शर्मा जी, देन बाली ब्रह्म भट, एंड देन आएंगे सैंडी शाह और उसके बाद अनीसा नासिर। इसी तरह से ये सिलसिला वीकडेज में चलता है और वीकेंड पे आप सुन पाते हैं दीप राजा को इन द ब्रेकफास्ट शो। दीप राजा के बाद आती हैं रितु शर्मा, फिर अनुराग और फिर सरिता की बारी आ जाती है, तो फिर आपसे मिलने के लिए मैं हाजिर हो जाऊँगी अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। पर आप भी वादा कीजिए आप हमारे साथ रहेंगे, इसी तरह से प्यार करते रहेंगे और अपने होने का एहसास भी दिलाते रहेंगे। चलिए बस यही मैं हमेशा कहती हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्यार से ज़िंदगी को बिताएं। जो भी हमारे पास पल हैं वो अच्छी तरह से बीतें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब।
1: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
8: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snill Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
7: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
7: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
13: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
14: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
15: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
14: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
16: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर 14 डेज टू जापान एंड साउथ कोरिया फॉर चेरी ब्लॉसम्स इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सेप्टेंबर एंड गेट अप टू 300 ऑफ or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
17: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
18: Thank you for 5 glorious years. Leica Gold.

0: on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhvinder Vidali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208767-7627।

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Sandy Shah, live on Leica Gold, Greater London.

0: लपक झपक तू वार बदर मां बरस बरस तू कार बदर लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आ
1: गिन गिन ना ना गिन गिन ना ना गिन गिन ना ना गिन गिन ना ना।

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: ये रिश्ता क्या कहलाता है।
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार। Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
5: मैंने ना function रखा हुआ है।
6: हर meal को बनाओ थोड़ा और special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms just 8.96, 10 kilograms only 16.96, and the big 20 kilograms pack just 29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers, or her special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हंस तूने जान।
3: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच अ लाइव फीड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार।
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
10: देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
9: डेजर्ट सफारी,
10: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
9: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
10: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल or protected.
11: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
12: I left behind everything I knew.
11: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
12: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
11: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
13: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio, Greater London.

0: ताली ताक धीमी ताक ताली ताक धीमी ताक झालं आमचं ताक झुगे ताक ताजी गेलं ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारिता झग तारिता झन झाले गोगू तारी दाबू तारी गेटे ताक झम तारिता झग तारिता झन झाले गोगू तारी दाबू तारी गेटे झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ताक झंड ताक झुमी ताक झंड ताक झम तारी झग तारी झन झाले गोगू ताक झंड ताक झुमी ताक झंड ताक ताक झंग झंग झंग कडे झग झंग ताक झंग झंग झंग
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।